0: Tech Talks
1: में प्रोग्राम के एक्सक्लूसिव स्पॉन्सर फाहिपे।
2: बिल तक दक्कन फंसे हैं गोते मियोती फाहिपे ऐप बिल तक अंगारा जुमला अदु फाहिपे ऐप ट्रांसफर कोल्ला देंगा महुरी हाँ बिल तक फैसा दक्का निम्मा लम्बी फोन फेंग गैस अदि मीडिया नेट बिल कस देख के ने रीलोड रास्टस नूनी डेटा पेक्विस नेगे नेंगे मी हम डिजिटल वॉलेट है देने मस देबा वायर बिल नो देखी गेंग लारिया वीनुए नेंगी गेंग उल्लेख नुचे ने कुरिया डिजिटल पेमेंट का फाहिपे माफ है

मी हफ्त्यागटी खबरता काय कस्मीबद्दल कुरी अळकणू रश्वाण टे खबरता होगे सुरू हीता होगे तेरेगा एपल के आ सीईओ का जॉन टर्नस आयन कॉफी इंस्ट्रक्चर कंपनी के कैनवस हे कुरी खबर गई तुरुं फुजी फिल्मों इंस्टेक्स मिनी तेरा बाजार नेरुन खबर के तफसील वस मिगडीगा खबर तो के तफसील को कुरिया दानं दुनिया के टेक्नोलॉजी के मैदान का एम में नफूज कर एक कंपनी का मवा एप्पल के हिंगुम के एम इस मगामा बोडो बदले के नवमा एक कंपनी के बोडो रस्मी को निम्मा यूलान कॉफी एप्पल ने नेरुन बयाने का बुने फावनी दहास एगार वन हरो फिशिंग एक कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का मगाम फुरुबम के देवी टीम कुक ए मगामु वकी वडा करने वाले कमा कुक के बदल के एप्पल के आ सीईओ के मगाम आईएन कुरनी माफवनी मिहार कंपनी के हार्डवेयर इंजीनियरिंग के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के मगाम गहुनेवी जॉन टर्नस मे बदल रस्मी को अमली सिफानानी अन्न सितंबर मोहगे एवन दोह फिशिंग मे बदल आए को टीम कुक एप्पल कंपनी मुले वकी वडा नुगनवाने एना दे फुरवानी एप्पल के बोर्ड के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के मगाम मे आदवरुका कुक्के एम्मे बोड मसूलियत कव्वाणी दुनिया के एक गौमुताग सरकार तक सियासत कंडाला इस्फराय तक गुड़ुंबदही कुरुं मी फायतु विदिहवरक अंहारुग तेरेगा एपल के सप्लाई चेन अधि बैन लगवा मी वियफारी फुला कुरुमा कुक वर पोड़ इसकमे देव्वी दायराए कुक मगामु वके वडा गन्न वायरु जॉन टर्नस कुरिं बलहट्टवम गेंदेवी हार्डवेयर इंजीनियरिंग के बैथ मेदम फशिगम बलहट्टवाणी कुंफोनी की तजरिबा कर देबे फुलो कमवा जोनी सुरुजी अधि टॉम मरीब टीम कुक के फर्ना रहर के दौर की एपल के तारीख का दुंग एम में कामयाब ए दौर देहा से गार वन हर कुंफुनी के बाणी स्टीव जॉब्स बलिहाल थोरी को तुंग मगा मुंदुरू मा गुड़िगिंग कुक सीईओ के मगा मा हवाल वीरु एपल के मार्केट अगा की तीन से देख फंसास बिलियन डॉलर नमस एना के हरुदना हिंगुम के दशुंग एपल में वनी हाथर ट्रिलियन डॉलर का अघोरी कुंफुनी का बदलेफा कुक के दौर का आईफोन के एक ही मॉडल तो के तुरुंग एप्पल वॉच एयरपॉड्स आदि एप्पल के अमिल चिपसेट का मवा एप्पल सिलिकॉन फायदा उफे दुनता तारफ को कुंफुनी के आमदनी वनी इंतहाय के तुर कोफा एप्पल के आ सीईओ जॉन टर्नस की देहास एवन आहर फिशिंग एप्पल का मसिक के कुरबा मुंगेंदवा कुंफुनी के मसिक का तुगे माहौला फलसफा एम में रंगला दरना एबे फुला उमुरु फंसास आहरु के टर्नस वनी आईफोन आईपैड आदि मैक कंप्यूटर तो के हार्डवेयर फार्मा कुरुमुगे इस दौरे अदा कुरवाफा टीम कुक वनी टर्नस की ईजाद वेरी सिकुंडी के वेरी के कोतुका सिफा कुरवा एप्पल के मुस्तकबल एना के अहमती का अमाम वाणी कम के यकीन कर देवाफा मी बदला गुलिकन टर्नस विदालुवी स्टीव जॉब्स आदि टीम कुक फदा मुहिम शख्सियत तो के अरिहुन लिबुन फिदावलता की एना लिबुन एम ए बुड़ नसीब कमा अदि एप्पल के कुरिमगं हुरी गोंजे हुन तका कुरिमतला कुंफुनी आ उस्मिन तका गेंगोस तिनमं एना हुन नेवी थैयार कम वेस विदालुवी एप्पल के बोर्डुं इत्तिफाकुं फास को फवा मी बदल की कुंफुनी के कुरिरुमं एलुनु मुहिम फियावले गोतुका माली माखिरुं देके मुनि टेक्नोलॉजी दुनिया मिहारु इंतजार कुरमुंदनी जॉन टर्नस के जामतुगा एप्पल लिन देन दक्कालाने आ इजाद तका